0: अनफाल हुई गन अनफान खुल नबी सलाम यीशु नुसवी अस्सलाम वालेकुम और इस नाब मनी जिंदाबाद ओके शी फाइंदाबाद तासुहुम अनफाल हुम और थैंक यू सो मच और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मदर प्रोडक्ट वाली से खबरी कोली द फार्मूला ब्यूटी क्रीम शरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंतेआप तासु कोई तासु भी आप ब्यूटी सही की चिता उस संग ब्यूटी मिलावेगी ता उस संग खुला मिलावेगी ता उस संग रंगीनी मिलावेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ना डक प्रोडक्ट इंशाल्लाह यू सिल इंतेआप लासी भी दे यू सिल इंतेआप दखपल शुन दखपल खुला दखपल खाइस और दखपल प्रोडक्ट पारो तस बदेर प्रोडक्ट इंतेआप खड़े विचुन के तस लबर रिजल्ट ने भी मिलाव शुया बता सुमा यू से खड़ी है या चिकम दे उई तस खबर की जम प्रोडक्ट तस रिजल्ट दर ने की उई तस ई द गोगनी सी उडस विंते अर्थवे डस विंते गुजारे ना ना ना ना ना ना ना ना बिल्कुल ना असाम लुदी तस लदा खबर चर तो उमने की कलम प्रोडक्ट तस वाखले रिजल्ट मिलाव निशी शॉपर की वाचवा वापस इसी आओ मागा दुकानदार ले योसा और खपले पैसे ते वापस रा वाखला ठीक शु करा अनस्ता सुनिया भई जाने चिकम दी कना गी द बबी हम ता सुडी से याद करानी अगी खु बिया खल को ता आसी वैसे
1: ए खारी वैसे मा यो न मसीदा वे सम खैस्ता द ए वैसे मा मास्टर मास्टर खारी ए वे वे सम शी सान गी अनि अगाने सी खल को लसी पतुना दुमरा खैस्ता नी खु ओ उसी का फार्मूला शुरू करी या फोर इन वन स्टार्ट कर नो खैस्ता खु बखा मखाए लासी व खैस्ता ये गाना लासी व खैस्ता वाय वाय माशाल्लाह
0: بلا خبر ہے میری اشتیا ورا بلا خبر ہے استاسو افی جان دے لینے نے افی جان استاسو باجگانی و افی جان بم بیا استاسو نے چکم نے استاسو ہائس تے بیا اسی خف کی چی دا چھ گپتہ پس باند خیشتہ شوی دا دوم رزڑ دا پچھ باند خیشتہ شوی دا نڈا خیش چکم دے کنا بیا تا سول پتہ نی وی کنا چھ دا ہائس تے اسنا کاسمیٹک پاکستان وی ننشال انتہا بلازمی کو

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: Qu'étiez pour un faux dingue.
1: Qui Mohammed se wafa tune to hum tere hain. Ki Mohammed se wafa tune to hum tere hain. Ye jahan cheez hai kya lauh kalam tere hain. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस की नशीला हमारे साथ रहे हमारे साथ रहे साथ
2: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा।

जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhang. आप तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेशनल पाकिस्तान की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है सेहत की। दोपहर के चार बज चुके हैं जनाब, और चार बजते ही तीनों रेडियो स्टेशन से एक साथ आपको ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है कि जिसका नाम है केसन टी टाइम शो। आप तो टी टाइम शो में तमाम सुनने वाले तमाम इन तमाम डेरा इस्माइल खान पहाड़पुर टांग के गिर्द नवा के इलाकों में सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाचीज, माम एंड मामीज, दादा एंड दादी, जान नाना एंड नानीज, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शवान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी नेक ख्वाहिशात, ढेर सारी तमन्नाएं, ढेर सारी सलामती की दुआएं आप सभी के नाम। तो जनाब मेरे तमाम चाहने वाले, तमाम फ्रेंड्स, तमाम यूजर्स, तमाम कैसे हैं जनाब? तो मैं उम्मीद हमेशा यही करता हूँ कि जनाब जिस तरह मैं बिल्कुल जी हशाश बशाश, चमकता हुआ दमकता हुआ, फाइन शाइन, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चहचहाता हुआ, मेरे तमाम चाहने वाले, तमाम यूजर, तमाम कस्टमर्स, तमाम करम फरमा बिल्कुल जी इसी तरीके से खैर वफियत के साथ होंगे जनाब। और एक नए दिन के अंदर एक और नए प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज केसन वाले हमें क्या क्या आके बताते हैं। तो जनाब हर रोज की तरह आज भी हम आपको ढेर सारा बहुत कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि जनाब ब्रांड न्यू शो है। आज है 22 मई 2026, जुमातुल मुबारक का खूबसूरत दिन है, बहुत ही मुबारक, बहुत ही बाबरकत वाला दिन है। और हदीस पाक मौजूद है कि जितने भी दिन हैं जिनके अंदर सूरज निकलता है उनमें सबसे ज्यादा फजीलत वाला जो दिन है वो जुमा का दिन है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आज के दिन आपका बहुत ही मुख्तलिफ गुजर रहा होगा। आज के दिन में आपकी इबादत, जिक्र अस्कार आम दिनों से बिल्कुल जी हट के होंगे जनाब, और आज को आप उस प्रोटोकॉल के साथ गुजार रहे होंगे कि जिस प्रोटोकॉल को हमारा मजहब, हमारा दीन इस दिन को सेलिब्रेट करने का, मनाने का कहता है कि जनाब इस दिन आप लोगों ने नए कपड़े पहनने हैं, इस दिन आपने खुशबू लगानी है, इस दिन आपने तेल लगाना है, आपने सुरमा लगाना है, अपनी पाकीजगी का ख्याल करना है जनाब, वक्त से मस्जिद की तरफ जाना है, और बाकी जो मामलात होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। जैसे कि जनाब ईद का आपको हुक्म दिया गया है, लेकिन उसके बाद चूंकि नए कपड़े ज़ेब तन कर लेते हैं आप और प्यारे लगने लगते हैं, तो फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि जनाब अपने से प्यारों से मिला जाए। तो जुमे का दिन जो होता है बेसिकली वो हमारे इलाके के इलाकों में कि जिस तरह सुना जा रहा है आपको पहाड़पुर में, डेरा इस्माइल खान में और साथ में टांग के इलाके में, तो भाई ईद का दिन होता है। और मेरी तरह आज भी आपने व्हाइट कलर का कॉटन का सूट पहना होगा मर्दों से मुखातिब हूं, और हल्की सी केसन की खुशबू, हाँ जनाब अकबर खुशबू भी लगाई होगी, और फिर अपनी इबादत का और जुमे को फील आती एक वाइब आती है ना। ठीक है जनाब, जब आप तैयारी करते हैं, घर के सारे बच्चे तैयार होते हैं, घर के सारे बुजुर्ग तैयार होते हैं, खवातीन तैयार होते हैं, बच्चियां तैयार होती हैं, तो एक माहौल सा लगता है। और वो जो कहा गया है कि जनाब ये दिन जो है तमाम दिनों का सरदार है, तो इस माहौल को देखते हुए तो 100% आपको लगता होगा कि वाकई जनाब इस दिन को जो हमारे मजहब ने दर्जा दिया है ऐसे नहीं दिया हुआ, और ये दर्जा इसलिए है कि जनाब इस दिन को अहमियत हासिल है। तो इस दिन जैसे आपको हम मॉर्निंग शो में बताते रहते हैं कि जुमे का दिन जो है सूरह काफ की तिलावत बहुत जरूरी है जनाब, एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान आप लोगों के लिए नूर फैल जाता है, हाँ जनाब। और ये जिन लोगों ने आज पढ़ ली है ना भाई, तो उन्होंने अपने लिए पूरा हफ्ता आसान कर लिया अपने ऊपर, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो भाई आज भी असर के वक्त आपको टाइम मिले तो जनाब इस सूरह को जरूर पढ़िएगा, सूरह काफ को, बहुत बरकत फजीलत वाली ये मैं कहता हूँ कि जो बंदा ये चाहता है ना कि पूरा हफ्ता उसके ऊपर कोई आफत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, रिस्क की कमी ना हो, तो उसे चाहिए कि जनाब जुम्मे वाले दिन सूरह काफ को जरूर पढ़ लिया करे। ठीक है जनाब, और दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये तो है ही है सो है, लेकिन कुछ चीजें जो हमारा मजहब हमें बताता है और उसमें जो है वो जुमा के दिन सूरह काफ की तिलावत है, इसकी बहुत बरकत है। ठीक है जनाब, और दूसरा जो है कुरान पाक, सॉरी जो है दुरूद पाक की कसरत है, और कहते हैं कि जो बंदा 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है तो उसका नाम उस कैटेगरी में आ जाता है कि जिसने जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दुरूद

खींचना। वंस अगेन मुझे कहते हैं खलील ताबिश जमान और आप लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ पूरा एक घंटा, यानी कि अभी तो 16 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट और 45 मिनट आप लोगों के साथ मैं रहने वाला हूँ। किशन की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करते हैं भाई, और आपके तीनों बड़े शहरों टांग डेरा इस्माइल खान एंड पहाड़पुर में हमारी कंपनी एक टॉप लीडिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसका रोल है, और मार्केट में वो कंपनी है कि भाई जिसके पास सब कुछ मिलता है जी ना, ये वो कंपनी है कि जब आपको आप इस कंपनी के यूजर बनते हैं तो आपको किसी और की तरफ देखना ही नहीं पड़ता। आप बस केसन के एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही जाते हैं और खरीदते ही जाते हैं।

0: पड़े।
1: हाँ जी, मेरा चाय का कप मेरे सामने आ चुका है और मेरा टी टाइम जो है अभी स्टार्ट होने को है, क्योंकि चाय का एक कप हाथ में और एक घूंट मुंह में, तो फिर आपका टी टाइम तो हो गया ना स्टार्ट। तो आपका क्या हाल है वैसे, चाय मिल चुकी है आपको, क्या इंतजार कर रहे हैं या शो के साथ?

हाँ जी, ही रांझा जैसा प्यार, सस्सी पुन्नू जैसा एतबार, शीरी फरहाद जैसी चाहत, लैला मजनू जैसी राहत, ऐसी ही एक प्यारी जोड़ी। हर दिल की अब बनेगी, हर घर की बनेगी जरूरत, केसर जोड़ी। जनाब केसन जोड़ी, कुदरती जड़ी बूटियों की मोहब्बत, और आपको दी गई जनाब हर धुलाई में ताजगी की दास्तां। दिलों की तरह खालिस, रिश्तों की तरह मजबूत, केसन जोड़ी, हर जुल्फ की पहली मोहब्बत, हर जुल्फ की सच्ची मोहब्बत।

सा मेरे ग्राम। आज की हमारी कहानी टी टाइम के साथ चाय के कप के साथ आपको सुनाने जा रहे हैं लैला और मजनू की कहानी। मेरे ग्राम लैला और मजनू की कहानी सिर्फ मोहब्बत भरी दास्तान नहीं है, इश्क की कहानी नहीं है, बल्कि वफा, जुनून, कुर्बानी और रूहानी मोहब्बत की अलामत समझी जाती है।

सलाम अलैकुम। जब मजनू को लैला की मौत की खबर मिली तो वो उसकी कब्र पर जा पहुंचा। रिवायत में है कि वो बहुत देर तक वहां फूट फूट कर रोता रहा, दुआ करता रहा और आखिरकार रोते रोते इसी कब्र के पास जाकर अपनी जान दे दी।

है, कहानी आपको इसलिए हमने सुनाई है कि जनाब जैसे उन जोड़ों को नहीं बुलाया जा सकता बिल्कुल, जब आपके अपने घर के अंदर ये प्यार भरी प्योरिटी से भरपूर ये हेयर केयर जोड़ी जब लेके आएंगे, तो यकीनी बात है कि ये आपके, आपने अभी तक बहुत सारे ऑयल भी इस्तेमाल किए होंगे, बहुत सारे शैम्पू भी इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इसकी जो फील है, जो इसके रिजल्ट हैं, क्योंकि जनाब इसके

0: ड्यूटी की तरफ आते हैं, तो अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। आप कॉल कर सकते हैं इस वक्त हमें, और कॉल करने के लिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिएगा 03444936336, 03444936336, ठीक है जनाब, ये हमारा नंबर है। और इसके अलावा अगर आप जोंग पर करना चाहें तो हमारा जोंग का नंबर ये 03137985457। एंड जनाब होपफुली कल आपको एक हमारे पश्तो के आरजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है जनाब। बहुत नामी ग्रामी, पहले तो मैंने निसार के कहा था लेकिन वहां से हमारा लिंक 91 से ओके नहीं हो पाया है, ठीक है जनाब। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कल आपको एक पश्तो, हाँ पश्तो स्पीकिंग आरजे। वैसे ये नहीं है कि मैंने आप लोगों के साथ जो है ये 22 और 2 24 दिन प्रोग्राम किया है तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमें बेतहाशा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें, मुझे बहुत डराया गया था कि आपको पश्तो नहीं आती, कंपनी का चलना ठांग में बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारी कंपनी चली नहीं है, दौड़ रही है ठांग। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
1: भाई जान मेरा नाम मोहम्मद सत्तान है, मैं बांदा सोलम गिरसा से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, पहाड़पुर साइड से?
1: जी ना, ये केस बंद हुई साइड से।
0: अच्छा, बस आप पहाड़पुर का एफएम सुन रहे हैं ना, 97 को सुन रहे हो?
1: जी जी जी जी, वही सुन रहा हूँ।
0: कैसे हैं मोहतरम, ठीक हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक हमारी फरमाइश आप पूरी कर दें, आपको इससे गाना तो लगा दे भाई जान।
0: अच्छा, गाने शाने तो वैसे हम नहीं लगाते, हम कलाम वगैरह जो होते हैं, सूफी कलाम जो होते हैं वही लगाते हैं, बहुत गाने वगैरह चलते नहीं है हमारे शो के अंदर। कोई कलाम अगर आपको अच्छा लगता है जो दफ के साथ हो,
1: जो आपको अच्छा लगे, हम आपके प्रोग्राम रोज सुनते हैं लेकिन कलाम सुनते रहते हैं।
0: अच्छा ठीक है जी, आप
1: बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा जी, आप सिर्फ प्रोग्राम सुनते हैं, आपका दिल नहीं करता केसन की कोई चीज खरीदे जो आपको जरूरत हो?
1: हाँ दिल तो करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता?
0: तो फिर जेब इजाजत नहीं देती आपकी?
1: हाँ बस यही मसला है। बस यही चक्कर है, तो कुछ नहीं है।
0: नहीं, आप दिल बांधे ना केसन के ऊपर तो जेब से पैसे खुद बहुत निकलते हैं, ठीक है जी।
1: इतने प्रोडक्ट है ना, कौन कौन सा खरीदेंगे समझ नहीं आती।
0: अच्छा, आप सिर्फ हमारा एक शैम्पू या ये तो दोनों रोजाना की चीजें हैं ना, शैम्पू रोजाना आप लगाते हैं, साबुन भी रोजाना मुंह धोते हैं। साबुन लेंगे तो आपको 200 रुपए का मिलेगा, शैम्पू खरीदेंगे तो 390 का मिलेगा, 350 तक मिल जाएगा। तो ये खर्चा कर लें थोड़ा सा रूटीन में, आपको समझ आ जाएगी कि वाकई केसन कितना प्यारा बनाती है भाई ये चीजें जब इस्तेमाल।
1: अच्छा भाई जान, आपसे एक मशवरा है कि आपका जो साबुन है,
0: हाँ
1: हमारे माथे पे ये थोड़े से धब्बे आ चुके हैं लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे किसी भी साबुन से।
0: अच्छा, आप फिर जाफरानी साबुन हमारा ले लें, 250 रुपए वाला।
1: ठीक है जी,
0: जाफरानी साबुन लगाएं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और आपके दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई।
1: इधर हमारे गांव में तो आते नहीं है, हमें पहाड़पुर शहर आना पड़ेगा, वहीं से लेना पड़ेगा।
0: केच आपके साथ ही है ना? केच?
1: हाँ, 1.5 किलोमीटर हमारे साथ।
0: बस तो फिर केच में आप उधर शबरा उस्ताद होते हैं, नहीं जानते आप शबरे उस्ताद को, केच वाले?
1: जी जी जी, जानता हूँ।
0: उनसे रापता करके वहाँ पर कौन है, शानी मोबाइल जोन है, वहाँ पर जाएं, ढेर सारे हमारे साबुन।
1: जी जी, शानी मोबाइल जोन मेरा अच्छा दोस्त है, जानता हूँ।
0: बस फिर क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, हमें भी परेशान कर रहे हैं काम का।
1: ठीक है
0: जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये बंदा तो भाई परेशान कर रहा
2: है।
0: तो भाई आपके इलाके में केस के अंदर भाई हमारे हर चीज मौजूद होती है, और भाई केसन के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और उन्हीं के अंदर हमारी एक एडवांस फार्मूला क्रीम जो है वो ग्लूटा वाइट क्रीम है, फेस वॉश है, और साबुन भी है। ग्लूटाथियोन जो है ना वो इस सदी का सबसे एडवांस फार्मूला है। अगर वो कहते हैं ना, वैसे हम पाकिस्तानियों की आदत होती है कि नई चीज जो भी आती है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो भाई पड़ जाओ इसके पीछे, नई चीज आई है ये केसन जो ग्लूटा वाइट है, ये बिल्कुल नया फार्मूला है, ठीक है जनाब, जिसके अंदर ग्लूटाथियोन, विटामिन सी और साथ में हाइलुरोनिक एसिड है। ये चीज, तीनों चीजें सोप के अंदर भी है, फेस वॉश के अंदर भी मौजूद है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा भाई जिनकी रंगत सांवली है ना, वो मेरी बात माने और बस यही फार्मूला लें, बाकी क्रीमें छोड़ दें। अगर आप इस वजह से क्रीम इस्तेमाल करते हैं कि आपकी रंगत जो है फेयर नहीं है, तो फिर आप ये खरीदें। हमारे साथ जो है असद अंकल टांग से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम, क्या हाल है जनाब?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है, प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा?
3: ये हमारा एहतजाज हो गया, एहतजाज सुने हमारा एहतजाज हो।
0: अच्छा जी, कैसा एहतजाज?
3: आप बगैर हमको कोई टीवी का कोई प्रोग्राम नहीं सुनेंगे

0: आपको आप चाहे स्कॉर्पियो चाहे पर्सो चाहे गृह हो।
1: अच्छा जी,
0: अलबत् अगर आपका कोई तकाजा है कोई मतलब मजबूरी है तो रिकॉर्डिंग चला लिया करे, लेकिन आपकी आवाज में हो किसी और की आवाज में ना हो। ये बहुत गलत तासुर है कि पर्सो पर्सो पर्सो एक चाक वाले सारे जानते हैं, टीवी भी जानते हैं, जानते हैं, सबको जानते हैं, ठीक है ना।
1: अच्छा, नहीं मेरा कोई तकाजा नहीं है।
0: हम ये बिल्कुल आपका प्रोग्राम आपका बंद होगा, हम नहीं सुनेंगे बगैर आपके किसी का भी।
1: ये तो फिर आप एहतजाज कर रहे हैं फिर है जी। आपकी मोहब्बत है। और वैसे ये तो आप लोगों के लिए हम कर रहे थे कि चलो कि पठान लोग जिनको समझ नहीं आती तो उनको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अंकल असद जो हमारे साथ थे उनकी मोहब्बत। और उन्होंने मुझे उस दिन मैसेज भी किया था कि शो आप ही नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना है। तो भाई आप लोगों के लिए जो है हम कर रहे थे कि चलो जी मुझे कहा गया कि कुछ लोगों को पश्तो वहां पर नहीं आती कहां के कुछ इलाकों में, तो इसलिए कि पश्तो का अगर आरजे आ जाएगा तो मैसेज आपको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे होगा। तो इसी बिना के ऊपर जो है इसी बिना के ऊपर और कोई वजह नहीं थी, लेकिन अगर आप इतना वो कर रहे हैं और आप मेरे लिए काबिल एहतराम है कि नहीं आपने ही कंटिन्यू करना है तो फिर हैं जी ना। चलो जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है बहुत पुराने हमारे यूजर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है?
1: दोने सेठ को ऐसा वेलकम आक्सु अपने प्रोग्राम दे विच, की हाल है सही
2: जी? खैर खरियात है, तुम्हारो खैर है?
1: तुम्हारे कटाई शटाई खत्म थी कि ये तुम्हारे लौ फसल वगैरह कटीज गए सारे?
2: जी आज माशाल्लाह बजरा नसीब भाई साहब को मिल गए।
1: बहुत लंबी छुट्टी की थी तुसे सारे को पता होवे तो आपको
2: सर जी छुट्टी की वजह से मोबाइल खराब थी गया।
1: हां हां,
2: मोबाइल को मैं टाइम तो पता कौन है बात कल मैं घंटी की शबरे चाचे दो।
1: अच्छा शबरे चाचे दो, ठीक है।
2: हाथ को हाथ तक लाइना रेड होते कशे नहीं होती के चक्कर है वहां के चार को पांच तक होता प्रोग्राम होते। हाँ,
1: पहले सात को आठ होता ये बात समझ चार को पांच की तय से
2: जी आज ओ मैं को पता कौन है बात छह सात आठ दीवारा जी बात
1: सात आठ दीवारा में जाए ठीक है तुम्हारे हैं सिंह
2: मेहरबानी
1: हूं तो समझ आ गई। जो चार बजे सारा प्रोग्राम होता है तो चार को पहले प्लती मार के बैठ है करो, ठीक है सारे प्रोग्राम
2: अल्लाह के हुक्म दे नाल मैं तो हूं बच्चे दूते काम तो शुरू बैठा हम ते मैं क्या आज पहले आज कॉल करू ते लाले नाल मिल भी सही आज।
1: चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी शुक्रिया ते सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने दे बाद आज तो को पहले तो सिर्फ पहाड़पुर सुनदा आज तुम्हारी आवाज ना आज तुम्हारी आवाज डेरे दे सारे लोग सुनदे पैन जितनी आबादी है, ठीक है जनाब। टोंक दे भी सारे लोग सुनदे बैठे यानी कि पहले तो सुनदा आज 100 लोग हूं तो सुनदे बैठे 300 लोग सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हुए सारे शैया सारे साबण सारे लोशन सारे प्रोडक्ट को किवें लगे सारा हाजमा सिर्फ किवें लगे तो ये दसो
2: माशाल्लाह सा जेरी शायद थारी खिद्दी है त्या सा इस्तेमाल कीती है सा ओ बई मजा देंदी है ओ कण बई चस देंदी आई।
1: अच्छा बिल्कुल बई जेरी घिंदे वेंदे वो अपनी अपनी चस देंदी वेंदी है पैसे ला के पछताओ के है कैसे गिना है ऐसा कैसे दी
2: मैं उठाई जो किया वदाम ते रूप शीशिया ते दिया गिन जाम हाथ में आ जाम मैं खुजे उठा मुके नु संगति आ जे वला मंगौ म कौड़े बहु मनसा चाहता है
1: जामा छुट गए चलो ठीक है सही बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया बस किसन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें रहो ते मैं सेहतमंद रहो ठीक है सही
2: सारे सलाम ठीक है सर।
1: मैदे के जो अमराज है ना मैदे के इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 63% लोग पाकिस्तान में मैदे की बीमारियों में मुबतला हैं, यानी कि हर दूसरा बंदा मैदे का शिकार। आप घर के अंदर देखें कितने अफराद हैं आप घर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि भैया अगर 6 हैं तो 3 तो मरीज हैं मैदे के, ठीक है जनाब। और मैदे से फिर आगे बहुत सारे मसाइल बनते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा जब आप अंग्रेजी अद्वियात की तरफ जाते हैं ना मैदे के प्रॉब्लम के लिए, मैं आपको आज تفصیل کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں. جی السلام علیکم, کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. ہیلو,
3: السلام علیکم سر. جی
1: جی وعلیکم السلام سر جی, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟
3: جی جی آپ سناؤ, خیر خیریت ہے؟
1: میں بالکل جی خیر خیریت. نام بتائیں گے اپنا؟
3: توقیر.
1: توقیر آڑا روڈ سے. کیسے ہیں توقیر بھائی, اچھے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
3: الحمدللہ خیر خیریت. آپ سناؤ,
1: پروگرام سن رہے ہیں اسٹار سے یا ابھی آپ نے انٹری ماری ہے, پہلے یہ بتاؤ. اچھا کال نہیں ملتی نا, تین بڑے شہر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بھائی وہ تیز بندہ وہی ہوتا ہے جس کی کال لگ جاتی
3: ہے,
1: ماسٹر ہوتے. کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری داستان لیلا اور مجنو کی جوڑی کیسی تھی, اور پھر اس کے بعد کیسن جوڑی کے اندر کیا وہ مسئلہ دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا جی, یہ انہیں جوڑیوں کے ساتھ ملتی جلتی ہماری جوڑی ہے, کیسن جوڑی. ہاں بالکل, یہ آپ اس دن آئے تھے شام کو جب ہماری شاپ بند ہو گئی تھی میرے خیال میں.
3: جی جی میں نے سینٹر نہیں ہے کے ساتھ,
1: ہاں ہاں
3: ادھر سے لیا تھا سر جی.
1: اچھا نہیں, آپ نے شفا درد ادھر سے لیا تھا یا ہماری شاپ سے لیا تھا؟
3: نہیں میں نے ادھر سے لیا تھا, آپ کی دکان شام کو بند تھی.
1: ہاں ہاں ہاں ہاں, تو پھر کیسا لگا آپ کو شفا درد ہمارا؟
3: اس کا بہت گہرا رزلٹ ہے سر, ان شاء اللہ ابھی آپ کے پاس لے کے آئیں گے.
1: تو باقی آپ کے چاچے کا پاؤں ٹھیک ہوگا؟ پاؤں میں درد تھا, کہاں درد تھا؟ درد بھی ماشاء اللہ, ایسا ہی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے ہمارے شفا درد کے اندر.
3: اللہ آپ کی کمپنی کو اور کامیابی دے, آپ کا جو
1: ہاں ان شاء اللہ مطمئن رہیں گے, کیونکہ ہم خالص چیز بھیجتے ہیں آپ کی طرف, ملاوٹ والی چیز کیسن کی نہیں ہوتی, اور خالص چیزیں ہی جب آپ کسی چیز کو خالص بناتے ہیں نا پھر رزلٹ کو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے جناب, خالص چیز ہی رزلٹ دیتی ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ہماری چیز خالص ہونی چاہیے, اس کے بعد رزلٹ کو چھوڑ دیں, رزلٹ خود بخود آ جاتا ہے جب ایک خالص چیز آپ تک پہنچتی ہے.
3: آپ کا جو گھر جو ہے سپر مور بنا ہوا ہے نا, چاچے کو میں نے کہا کہ وہ پکڑ لو پہلے, جو میرا بھائی کہتا ہے چالیس کو پکڑو گے تو پھر درد جائے گا.
1: اس کو پہلے پکڑنا ہوتا ہے نہیں تو درد نہیں جاتا.
3: میں نے کہا کہ پہلے اس کو پکڑو ان شاء اللہ درد جائے گا.
1: بالکل, اسے شتر مور کو پہلے پکڑیں گے تو پھر جائے گا. بہت شکریہ آپ کا, اور اس کو استعمال کراتے رہے ان شاء اللہ ہمیشہ کے لیے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت پیاری پروڈکٹ ہے ہماری یار, یقین کیجئے. جب مجھے ایک عورت نے کہا نا کہ بیٹا میری زندگی تو اسی کے سہارے چل رہی ہے, اس دن سے مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ ہماری پروڈکٹ واقعی کوئی خاص ہی. کہتا ہے کہ میری تو زندگی جو ہے نا اب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, میرے جسم میں کوئی درد ہوتا ہے نہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں, نہ میں کوئی گولی لیتی ہوں, نہ میں کوئی ٹیکا لگواتی ہوں, بس شفا درد اور درد. پھر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ درد کہاں تھا مجھے, ویسے درد کیا کہاں پر تھا. دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جناب جناب کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیں گے اپنا؟ عبد الحادی. روزانہ تیرے نوے نوے نمبر ہوتے ہیں عبد الحادی. میں تبدیل نمبر چار پانچ چھ جملہ آخر تے. اچھا کی حال ہے سناؤ عبد الحادی, ٹھیک ٹھاک ہی میں لوگوں پابندی لا سا شو میری کشاوی استعمال پتا
3: ہو
1: ساری محبت ٹانک نہیں وہ سکتے تھوڑی دیر, کتنا فاصلہ ہے تارے کو ٹانک دا؟
3: تقریباً
1: خراب
4: ہوئے
1: میدا خراب ہوئے ہاضما سیرپ گنو کنٹرول جی
4: ہلو
1: جی جی آواز آنی پی میری طرف متوجہ تھو نا نال پورے پیچھو عوام کو نال سملے دے ودے وے
4: نہیں نہیں عوام تو نہیں میرے نال
1: اچھا چلو ٹھیک ہے یعنی کہ لوگوں کو مشورے دینے ودے وے سائیں
4: لوگوں کو واضح مشورے دینے ودے ان چلا چکر لگا تے تے شیاں
1: نے ضرور ابے تواری ضرورت تے شیاں ضروری نہیں کرنے کہ گھر گھن کے تسا رکھ دیونے استعمال کرو تیل سارا شفا درد میدا خراب ہے ہاضمہ کنٹرول سیرپ استعمال کرو ٹھیک ہے سی اگر موٹاپا ہے تو ساری ویٹ کم پیٹ کم پھکی استعمال کرو وال ڈھانے پین گنجا پانے سارا تیل استعمال کرو وال سخت تو شیمپو استعمال کرو رنگت صحیح نہیں تو ساری گلوٹا وائٹ کریم استعمال کرو جی پکا تو وائٹ کریں دی ہے آئل سوپ یا فیس واش استعمال کرو تو دانے بالکل نہیں نکلتے چہرے تے ٹھیک ہے سی
4: اواز تو لگے ویسے بالکل
1: انشاءاللہ لگے ویسے تے اگر پچھلے کوئی نشانات ودین تے ساری زعفرانی کریم استعمال کرو او نشانات بالکل انہاں ختم تھی ویسے ٹھیک ہے سی
4: خلیل بھائی صادق بھائی جان او کوئی دو گالیاں کرو
1: تے اچھا بھائی صادق بھائی نال کرنے نال تک
5: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام صادق بھائی کیویں حال ہے اچھے ویسے ٹھیک ٹھاک محبت اللہ پاک کو سلامت رکھے برقرار محبت ختم ہی تھی وے لیلا مجنو والی کار امر رامن ہمیشہ ختم نہ تھی وین
5: ختم
1: ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہو گیا بیا کوئی حکم صحیح کال تو بہت لمبی تھی گئی چار پانچ منٹ تک پہنچ گئے ہیں رمک
5: بڑی
1: مہربانی بہت شکریہ یہ آپ یقین کیجئے کہ ہمیں ہمارے سیلز مین آ کے بتاتے ہیں کہ رمک کے ایریا میں ہمارا جب اسٹاک جاتا ہے تو وہ ہماری پرائسز کے اوپر جو ہے نا وہ 400 والا جو فیس واش ہے اس کے اوپر 800 لکھ دیتے ہیں ڈبل قیمتیں لیتے ہیں پتہ نہیں یار ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں ہے پتہ نہیں یعنی اللہ کو جان ہی نہیں دینی خوف ہی نہیں ہے دل کے اندر کہ بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی یار کہ 400 والی چیز آپ 800 کے اوپر 1100 روپئے کے اوپر بیچ رہے ہوں سو جناب آپ لوگوں کی کالز ہم نے بہت ساری لے لی ہیں آپ لوگوں کے میسیجز میرا میسج جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ کو وائٹننگ کا ایشو ہے سانولا پن اگر آپ میں ہے نا تو سانولا پن اس بندے کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر یہ میں بتاؤں کہ خون کی کمی جس بندے کے اندر ہوتی ہے بہت ساری علامات ہوتی ہیں اسی طریقے سے گلوٹاتھیون کی جب آپ کے جسم کے اندر کمی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی رنگت سانولی ہونے لگتی آپ سانولے ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے گلوٹا وائٹ رینج جس کے اندر گلوٹا وائٹ کریم ہے گلوٹا وائٹ فیس واش ہے اور صابن اس کو جب استعمال کریں گے تو بھائی یہ پینیٹریٹ کرتی ہے اور آپ کی سکن کے اندر سکن کی جو وائٹننگ ہے اس کو یہ برائٹنس کو بڑھاتی ہے ٹھیک ہے جناب تو ضرور استعمال کیجئے ये ना सिर्फ आपकी ब्राइटनेस को बढ़ाती है बल्कि ये दाग धब्बों को भी खत्म करती है। लेकिन हमने कैटेगराइज किया हुआ है, आपको बता दें हम ये कहते हैं कि हमारी दो क्रीमें हैं, एक जाफरानी फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है सिर्फ, ये डे एंड नाइट है, ठीक है जनाब। जो कम एज की लड़कियां हैं जनाब, जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, ठीक है जनाब, कम एज की हैं, उनकी उम्र 14 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, लेकिन अभी तक वो मैरिड नहीं है, तो ये हमारा ग्लोइंग फार्मूला जो है केसन ग्लूटा वाइट क्रीम डे एंड नाइट है। आप इसे दिन और रात दोनों में लगा सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट किस्म की फार्मुलेशन है। लेकिन दूसरा जो नाइट फार्मूला है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, ठीक है जनाब, वो हम रिकमेंड करते हैं शादीशुदा औरतों को, ठीक है जनाब, जिनकी छाइयां बहुत पुरानी हो, ठीक है जनाब, तो वो केसन की जो जाफरानी क्रीम है ना उसको चूज करें। दो क्रीमें हैं तो इनके कस्टमर को हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर आप इस तरीके से इनको यूज करेंगे तो जो है आप कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं जैसे शादीशुदा हैं तो वो ग्लूटा वाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि उनके लिए मना है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से फार्मुलेशन बनाई हुई है कि अगर एज वाइज आप हमारी क्रीम्स को इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जनाब। इससे पहले हम हाजमा कंट्रोल सिरप की बात कर रहे थे, वो मैं आपसे डीपली भी बात करूंगा भाई। इस वक्त मार्केट में जो हाजमे के सिरप होते हैं ना, मैदे की सिरप, देखिए उनकी कीमत कोई 350 का, कोई 450 का, ठीक है जनाब, कोई 300 का, क्यों होता है जनाब? आप सोच रहे होंगे कि केसन का सस्ता क्यों है, तो केसन का इसलिए सस्ता है कि इसमें डॉक्टर की कोई कमीशन नहीं है, ठीक है जनाब, ये हम डायरेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यही कंपनी, आप यकीन कीजिए कि जब हम ये प्रोडक्शन हो रही थी तो हमें 12 कहा गया कि आप इतना सस्ता ये सिरप क्यों बना रहे हैं, ठीक है जनाब, तो हम कहते हैं कि हमारा डॉक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर तब तक कोई चीज़ नहीं लिखता जब उसके पेट में कुछ जाता नहीं है, और कंपनियां कभी भी अपनी जेब से कुछ नहीं देती हैं, वो बेचारे मरीज की जेब से निकाल कर डॉक्टर के मुंह में डाल रही होती हैं। तो ये एक सस्ता सिरप है, बहुत इफेक्टिव सिरप है भाई, इतना रिजल्ट वाला ये सिरप है कि आप कार्टन घर में ले जाएंगे, ठीक है जनाब। ये इतनी प्रोडक्ट है, आगे ईद आ रही है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बदहजमी होती है, गैस होती है, भारीपन होता है, हाजमा नहीं हो तो बोटियों शोटियों का इस्तेमाल कीजिएगा। दुर्योधन द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, वेलकम टू हमारा अपना फेवरेट शो विदार जे, एंड जुमा मुबारक टू यू एंड ऑल योर लिसनर्स। अल्लाह अपनी मोहब्बत को रहमत बनाकर आप पर, आपकी फैमिली और तमाम लिसनर्स पर बरसाए, आमीन। और बहुत शुक्रिया आपका सोनिया आपी एंड महानूर सिस्टर के मुझे मुबारक पेश करने की इतनी मोहब्बत से नवाजने पर। रिप्लाई में देर ढर दुआएं पुरखुलूस आपके लिए। अच्छा जी, कहते हैं कि भाई उस्ताद जी, आप एक बार फिर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक्य बिल्कुल जरूर सुनाइए। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे सवाल का जवाब
6: सोल्यूशन, बस एक सोल्यूशन।
1: अच्छा जी, चलो आपको जवाब तो मिल जाएगा, है जी
6: ना,
1: ना आप कहीं भागी जा रही है, ना ही मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। भाई जान कैसे हैं, क्या हाल चाल है, चेहरे पर उदासी और दिल में गम जी रहेंगे कुछ इस तरह हम और भाई। क्या सुबह आपके शो होता है, और सब सुनने वालों को सलाम, मैं भी केसन की प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और बहुत मस्त रिजल्ट है। रोनी पहाड़पुर से जी, सुबह पहाड़पुर एफएम के ऊपर हमारा मॉर्निंग शो आपको पैगाम में सुबह जो है सुनने को मिल सकता है, अगर आपके इलाके में पहाड़पुर एफएम आता है, ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम केटीए, क्या हाल है, अनीसा हूँ, नाम तो सुना होगा, हाँ अनीसा नाम सुना हुआ है, तुम्हारा क्यों नहीं सुना हुआ। अरूबा को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, अल्लाह पाक अरूबा को हमेशा कहे आपके लिए, और शो बहुत अच्छा है हर रोज की तरह। लास्ट में उर्दू वाली मानूर को और सब सुनने वालों को मेरा सलाम, अनीसा ढेर सारा वेलकम, और आपके सलाम आपकी सहेली को पहुंचे। साथ दर्जी हमारे साथ हैं जनाब खलील भाई, आपको नूना सेठ अमजद गुरु जी पंजाब वाले मिस्कीन बंदे को जो बेचारा बीवी को आंखें नहीं दिखा सकता बगैर राजा कपूर की बात हो रही है जनाब, राजा कपूर वो बंदा कहता है मैं बीवी को अपनी आंखें नहीं दिखा,
6: बस एक सोल्यूशन
1: शहर पे भी सलाम कहती है भाई। शो लाइव है क्या जी? बिल्कुल जी, लाइव शो इस वक्त आप हमारा सुन रहे हैं, तीनों एफएम, ग्लोबल एफएम 91 डेरा, रेडियो पैगाम पहाड़पुर और रेडियो अमन टांग से एक साथ बरह रहा है। ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है प्यार की, मोहब्बत की, प्यार है, ये आवाज है शिफा की, आवाज है खूबसूरती की और सेहत की। अब्दुल हादी अगेन आज हमारे साथ मौजूद है, मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपका तमाम बहुत अच्छे मोहम्मद अजहर
7: सुबह की पहली किरण जैसे खिलता नूर हर पल में.
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे? डे वाज वेरी
6: गुड.
1: दिस इज माय फर्स्ट मैसेज इन योर शो. सब लिसनर्स को सलाम, इट्स मी सानिया फ्रॉम टॉन. भाई वेट को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो कब आने वाली है? जी जनाब, केसन का वेट गेन फार्मूला है बहुत जल्द.
6: हेयर ऑयल और केसन शैम्पू का कमाल सुनो, बालों के हर मसले का हल सुनो, कुदरती ताकत से भर.
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अर्ज ये है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं.
6: लंबे घने नरमो मुलायम.
1: मनशा का मसला बहुत अरसे से है मनशा, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ डाइट जब आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है जनाब, अपनी खुराक को आप बेहतर करते हैं तो आपके मसले खुद बहुल हल होना शुरू हो जाते हैं. वैसे केसन की जो जोड़ी है, केसन का ऑयल या केसन का जो शैम्पू है, वो मुकम्मल तौर पर आपके बालों की गिजा है. एक ये मसला होता है कि अगर गिजा का मसला नहीं है तो फिर आपका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जेनेटिकली मसला हो सकता है कि आपके खानदान के अंदर भी लोगों का हेयर फॉल है, या फिर जो है आपकी जो है कोई आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट ये होता है और हेयर फॉल की सूरत में वो सामने आता है. तो सारी चीजों को फोकस रखिए और रेगुलर यूज कीजिए केसन का हेयर ऑयल और शैम्पू, और इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो जड़ों से मजबूत होंगे. केसन की जो प्रोडक्ट है भाई आप लोगों के पास मौजूद है. टांग के अंदर हमारी ये ऑफर चल रही है, और भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बोला है कि लोग कहते हैं दो चीजें फ्री अब नहीं है, पहले वाले दिनों में थी, आप सोए रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते. अभी भी अगर आप सोए रहेंगे तो अगले 4-5 दिन है टांक वालों के पास. मंसूर जनरल स्टोर टांक में जो है भाई सदाम प्लाजा में, वहां पर 1000 रुपए की चीजें खरीदेंगे केसन की तो आपको जो जाफरानी फार्मूला क्रीम है ना वो फ्री मिलेगी. 320 रुपए की हमारी क्रीम है वो हम आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है जनाब. यानी कि 1000 रुपए के ऊपर 320 रुपए की बचत आपको मिल रही है. ये चांद रात तक है, यानी कि 10 से 11 तक है, उसके बाद ईद के बाद कोई ऑफर टांग में नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जनाब. पहले हमने ऑफर दी थी, पहले 10 दिन 2 चीजें फ्री थी 1000 रुपए के ऊपर, अब एक चीज है और ये बस ईद तक है, उसके बाद जो है आपको फिर रूटीन में चीजें मिलेंगी. ज्यादा कम कीमत में आपको चीजें देने या आपको फ्री चीजें देने टांक वालों को क्या मकसद है हमारा, कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि भाई देखें आप पहले भी नो डाउट बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे कंपनियों के, और आप फर्क महसूस करेंगे जब आप केसन के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे. सो जनाब मैं बात कर रहा था जो डिफरेंट प्रोडक्ट मैदे के लिए इस्तेमाल होती है मेडिकली अंग्रेजी में, जैसे कि एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डोमपेरिडोन, इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं. ये जितने भी फार्मूले हैं ना ये एक एक अलामत के लिए होते हैं, यानी किसी को तेजाबियत है तो उसके लिए अलहदा से, किसी को एसोफेगस रिफ्लेक्स का एक्शन है यानी कि खाना वापस आता है उसके लिए अलहदा से, यानी कि अंग्रेजी के अंदर जो अंग्रेजी अद्वियात है ना वो मैदे के मसाइल के लिए अलहदा अलहदा है बिल्कुल. लेकिन जो नेचुरल वे है जैसे कि सौंफ है, जीरा है, अदरक है, पुदीना है, ये जड़ी बूटियां जो होती हैं प्रीमियम क्वालिटी की, ये जब एक साथ आपको सफूफ की सूरत में मिलती हैं या सिरप की सूरत में मिलती हैं तो ये उन तमाम मसाइल का हल होता है जो आपके मैदे के साथ रिलेटेड है, ठीक है जनाब. तो केसन का जो हाजमा कंट्रोल सिरप है बहुत ही अमेजिंग, इसका रिजल्ट चाहे तेजाबियत हो, चाहे आपके सीने के अंदर जलन है, ठीक है जनाब, चाहे आपको खट्टी डिकारें आती हैं, चाहे आपको मतली कह की सूरत हाल होती है, या खाना आपको हजम सही तरीके से नहीं हो पाता, या गैस होती है, तो भाई आप केसन हाजमा कंट्रोल सिरप को अपने घर के अंदर रखिए, ठीक है जनाब. और इतना रिच है कि आप इसका एक चम्मच भी खाएंगे तो 24 घंटे आप सुकून और शांति के रहेंगे. बहुत ज्यादा बीमारी है जनाब, और तकरीबन अगर इस वक्त हमारी आबादी 25 करोड़ है तो आप समझ लें कि इसके अंदर जो है वो 14 करोड़ लोग जो है ना वो मैदे की बीमारियों में मुब्तला है. 14 करोड़ लोग, यानी 50% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 61% लोग जो है वो मैदे की बीमारियों में मुब्तला है. हमने जो फार्मूला बनाया है वो बिल्कुल जी एडवांस है, बिल्कुल जी लेटेस्ट फार्मूला है, और ये आपको पहले चम्मच के अंदर बताएगा कि इसने आपके मैदे को डिसकम्फर्ट को कितना कम्फर्ट किया है, और आपका जो है क्या कहते हैं आपका लाइफ स्टाइल और आप खाना पीना सब कितना बेस्ट हो गया है। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल आपसे मुलाकात होगी जनाब, अगर जिंदगी ने साथ दिया 4 से 5। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह के पास।

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: यतीम के सर पे हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि उसे खाना किसने खिलाया, उसे कपड़ा किसने पहनाया। कुरान का उसलूब समझिए। कुरान ये कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। असल में बात ये है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो, और यतीम को तुम इज्जत कैसे दे सकते हो और उसकी तकरीम तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास उसे पहनाने के लिए पहनावा नहीं और देने के लिए रोटी नहीं।
1: सुन्नत है इब्राहीमी है शेलाईमानी।
0: हाथ रखे उसे सीने के साथ लगा के उसका माथा तो चूम सकती हो ना। अल्लाह ये नहीं देखता कि इसे खाना किसने दिया।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।